सोचो, कोशिश करो, तलाश करो, इरादा बनाओ, दो कदम चलो। हम तुम्हारी कोशिशों को, इरादों को, इंटेंशंस को एक्सेप्ट करते हैं। और कभी कभार एक छोटा सा काम अल्लाह तबारक व तआला सिंसियरिटी के नतीजे में इतना बड़ा बना देता है, इंसान की नजात मुमकिन उसे एक छोटे से काम के नतीजे में हो सकती है। तो सलमान फारसी को न तन्हा आपने फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारी, आपके ईमान और आपकी ज़िंदगी की गवाही वक्त का इमाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। और तीसरी सिफारिश, मन अकूल अलहक व इन काना मुर्रा। पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा है, ऐ सलमान, हमेशा हक बोलना, सच बोलना मुमकिन है, सच बोलना तुम्हें कड़वा लगे। तुम्हें कड़वा लगे जी? और मैं अगर सच बोलूं तो मुझे भी कड़वा लगता है। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोगों को कड़वा लगता है, बिजनेस में फर्क पड़ जाता है, मसलहत में फ़र्क पड़ जाता है। आसान नहीं है सच बोलना, हक बोलना, हमेशा हक बोलना आसान काम नहीं, लोग दुश्मन हो जाते हैं जी। इंसान तो उसके बाद एहसास करता है, चाहे काश में ये बात ना कही होती, लेकिन अगर हक है जो तुमने कहा है वो हक है। कुलिल हक व इन काना मुर्रा, अगरचे कड़वा है हक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों की ज़िंदगी में असर करता चला जाता है, वो करता चला जाता है। हक बात हमेशा करते चले जाओ। और हज़रत सलमान फ़ारसी ने इसी की साय में ज़िंदगी गुजारी। हक बोलना है, गाली बकना नहीं है, गाली बकना हक नहीं है। बड़ा खूबसूरत जुमला किसी स्कॉलर का, हक बोलने में और बदतमीज़ी में फ़र्क है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करना और सच बोलने में ज़मीन तो आसमान फ़र्क है जी। कभी कभार इंसान ऐसा लहजा अपनाता है जिस लहजे के नतीजे में हक बात भी बुरी लगती है लोगों को। हक बात नहीं होती जहाँ अंदाज बदल जाता है। अंदाज अच्छा हो तो इंसान के हक बात की तासीर भी नज़र आती है। सलमान फ़ारसी ने हक बात कही। पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद आप एक नॉन पर्सनालिटी थी मदीने में। मौलाए कायनात के आप आशिक, मौलाए कायनात की विलायत को मानने वाले, मौलाए कायनात की इमामत को मानने वाले। किसी ने कहा आप असहाब का तस्किरा क्यों नहीं करते? हम कहते हैं हम असहाब का तस्किरा सबसे ज़्यादा करते हैं। जिन असहाब को आपने छोड़ दिया है, हम उस असहाब को गले से लगा लिया है। विलायत के साय में सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, क़म्बर, अम्मार, क्या ये सहाबी नहीं है? सहाबी क्या रसूल के कंपेनियंस नहीं है? इनकी बात होती क्यों नहीं है? इनका तस्करा क्यों नहीं होता है? ये आशिक़े मौलाए कायनात के विलायत के रास्ते पर इन्होंने साबित कदमी दिखाई, हक बात कही। इनको परेशान किया गया, इन पर जुल्म सितम ढाया गया, लेकिन हक बात से कहने से कभी ये मुकराए नहीं। अबू ज़र को शहर से निकाल दिया गया, मदीने से शाम, शाम से मदीना, मदीने से रब्ज़ा। किस जुर्म में? किस जुर्म में? हक बोलने के जुर्म, अली की विलायत के ऐलान करने के जुर्म में निकाला गया। गरीब पैदा हुए हज़रत अबू ज़र, गरीब इस दुनिया से चले गए। सराहने कौन था हज़रत अबू ज़र के? आपके चार साल या सात साल बेटी के अलावा दश्त में, सहरा में, डेजर्ट में कोई अबू ज़र के सराहने नहीं था। वहीं पर दम निकल गया अबू ज़र का। तो मदीने में लोगों के दरमियान हज़रत सलमान फ़ारसी बुलंद आवाज़ में कहते थे कि अगर तुम लोग अली की विलायत को कबूल कर लेते तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देता। बरकतें, रहमतें, ब्लेसिंग्स विलायत और इमामत के साए में इंसान को नसीब होती है। सलमान फ़ारसी ने भी बांग दोहल ऐलान किया। और चौथी नसीहत, वन असला रहमी व इन अदबारत। अल पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा, ए सलमान, रिश्तेदारों से मिलते रहना, जुड़े रहना, चाहे वो तुमसे दूर होते चले जाए। रिश्तेदार मेरा भाई चाहे मुझसे दूर होना चाहे, दूर भागता रहे, तब भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे जुड़ता रहूं। वो मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं जाता रहूं। वो मुझे सलाम करें या ना करें, मैं करता रहूं। वो मेरी रेस्पेक्ट करें या ना करें, मैं उनका एहतराम और उनकी रेस्पेक्ट। बहुत मुश्किल मरहला होता है, बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा,
बड़ा पिता।

चाहिए कि अगर इंसान से कोई दूर भागता भी रहे, और पैगंबर साहब फरमाते सलमान उनसे तुम अपने रिश्ते को बाकी रखना। क्यों? इससे क्या होता है? इससे जेलसी ख़त्म हो जाती है, एनिमिटी ख़त्म हो जाती है, दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक ना एक दिन ज़रूर वो बंदा तुम्हारे काम आएगा, ज़रूर काम आएगा। भैया नमाज़ें मंडे के दिन नमाज मगरिबैन के बाद तकरीर में एक मैंने एक जुमला कहा, जैसे गंदा पानी होता है, गंदा पानी हमेशा काम आता, कभी कभार डर्टी वाटर कभी कभार यूज़फुल हो जाता है। तो क्या यूज़ होता है? कि दरख्तों को हम पानी दे सकते हैं, फार्मिंग के काम आएगा डर्टी वाटर, गंदा पानी फार्मिंग के काम आएगा, एग्रीकल्चर के काम आएगा। जब तकरीर ख़त्म हुई तो एक मोमिन बंदा मेरा करीब आया, मौलाना एक और काम भी हो सकता है इससे, क्या हो सकता है? उसने कहा आग बुझाने के काम भी आ रहा है। तो आग बुझाने के लिए भी मेरा गंदा पानी काम आता है। कभी कभार रिश्तेदार मेरा बुरा है, मुझसे दूर भाग रहा है, मैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा रहूं, एक ना एक दिन ज़रूर वो बंदा मेरे काम आएगा। वह इन अदबरत, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कहने वाला तुमसे दूर भागता रहे, लेकिन तुम उससे जुड़ते रहो, यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। बस आखिरी नसीहत है पैगंबर इस्लाम की, वो अवसानी अन अक्सर मिन कौल, पैगंबर इस्लाम ने सिफारिश की है मुझसे कि मैं इस जुमले को बार बार दोहराता रहूं। वो जुमला क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि मुझसे कहा पैगंबर इस्लाम ने, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई पावर नहीं, एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह तबारक व तआला। रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए ताकत चाहिए, हक बोलने के लिए एनर्जी और पावर चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए है तो हमें कहाँ से लेना है वो ताकत, वो सोर्स ऑफ पावर कहाँ है, वो कहाँ से मिलेगी मुझे एनर्जी, वो कहाँ से मिलेगी कुव्वत? फ्रॉम अल्लाह तबारक व तआला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। दूर दूर की बात क्या करें, हम नमाज में जो उठते बैठते हैं, अगर उसकी ताकत हमारी ज़िंदगी में ना हो, ना उठ सकते हैं और ना बैठ सकते हैं, इसलिए सजदे से खड़े हो रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं? बिहौलिल्लाही व कुव्वतिही अकूमु व अक़ूद। बाज़ मराजे नब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अकूमु व अक़ूद व अरकऊ व असजुद। परवरदिगार तेरी दी हुई कुव्वत से मैं उठता भी हूँ, मैं बैठता भी हूँ, मैं रुकू भी करता हूँ, मैं सजदा करता हूँ। अगर वो कुव्वत ना दे, वो ताकत ना दे, मेरी ज़िंदगी में ना कोई कुव्वत होगी, ना कोई ताकत होगी। सोर्स ऑफ पावर इज़ अल्लाह तबारक व तआला। अन अक्सर मिन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। क्यों क्यों ये कहता रहूँ? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया फ़इन्नहा कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना। ये जुमला सिर्फ जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना, वन ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द पैराडाइज ऑफ द हेवन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इंसान को ये जुमला सब्र भी देता है, शुक्र का सलीका भी सिखाता है, कुव्वत भी देता है और ताकत भी देता है। रिवायत में है, जब जंग के मैदान में करबला के दश्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असर आशूर लड़ते लड़ते खैमों के दरमियान आते थे, खैमों के दरमियान जहाँ बीवियों के खैमे थे, खैमों के दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े होते थे और बुलंद आवाज़ में कहते थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हुसैन जो तीन दिन की भूख और प्यास में जो जंग कर रहा है, हुसैन अपनी ताकत से नहीं लड़ रहा है, उसकी दी हुई ताकत से लड़ रहा है। कभी बीवियाँ मायूस ना हो जाएं, औरतें मायूस ना हो जाएं। इमाम ने याद दिलाया अल्लाह की ताकत पर भरोसा रखो, नजात का रास्ता दिखाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। एक बार कह देते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला بالله ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب

ऐसा ना हो कि इंसान का बैलेंस बिगड़ जाए। सुबह एक्सरसाइज में हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा हाथ में स्टिक थामो और अपने लेग्स को क्रॉस रख कर चलो, हाथ में स्टिक हो लेग्स को क्रॉस रख कर चलो। हमने पूछा इससे फ़ायदा क्या है, क्या तुम बैलेंस रखना सीख लोगे, गिरते वक्त अगर तुम्हारे अंदर बैलेंस हो तो तुम अपने आप को बचा पाओगे। बैलेंस नहीं है तो आदमी गिर जाता है, जिसमें बैलेंस नहीं जमीन पर गिरेगा, ईमान में बैलेंस नहीं है तो बड़ी बुलंदी से इंसान गिरेगा। जब गिरेगा तो फिर ईमान नहीं रहेगा, ईमान का बैलेंस टूटता है तो बंदा निफाक में गिर जाता है, जिसे आज की दुनिया में हिपोक्रेसी कहते हैं। आज मुसलमान लीडर्स में जिस चीज़ की कमी है वह बैलेंस की कमी है। यूएई ने अनाउंस किया है हर स्कूल में नमाज जमात होगी जहर की, हर स्कूल में नमाज जमात होगी जहर की। और तुम्हें नमाज याद आ गई, वो बच्चे याद नहीं आए जिनके पास नमाज से पहले खाने को कुछ नहीं है। उन बच्चों के खिलाफ तुमने मीटिंग्स रखी, उन बच्चों के खिलाफ तुमने साजिश की है, वो बच्चे याद नहीं आए। अपने बच्चे याद आए कि नमाज होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें वो बच्चे याद नहीं है जो गाज़ा के और फिलिस्तीन के बच्चे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं। वहाँ पर तुम्हारी ज़बान से कोई फतवा नहीं निकलेगा, तुम्हारी ज़बान से कोई स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकले। साजिश देखिएगा, हिपोक्रेसी देखिएगा, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी हम कह सकते हैं कि गज़ा के बच्चे पुकारते रहे हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, कोई मुस्लिम मुल्क कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वही यमन के खिलाफ जब लड़ने की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बैठकर एक अग्रीमेंट बना लेते हैं, अगर हमले अगर ना रुके तो हम हूतीस पर हमला करेंगे, अंसारुल्लाह पर हमला करेंगे, यमन पर हमला करेंगे। अचानक कैसे ये याद आ गई, इतना जल्दी इंसान अपने ज़मीर को बेच देता है। उन बच्चों की याद नहीं आई जो भूखे मर रहे थे, वो याद आ गए जिन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया और गरम गरम तुम्हें वो चीज़ें खिला दी जिसकी वजह से तुम्हारा ईमान ज़ाहिर हो गया। जहाँ बोलना चाहिए था तुमने बोला नहीं, वहाँ लड़ना शुरू कर दिया जी। जहाँ बातचीत हो सकती थी वहाँ तुमने बातचीत नहीं की, लड़ना शुरू कर दिया। जहाँ लड़ना ज़रूरी था उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग रखना शुरू कर दिया था। ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा इस्लाम है, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? मुझे आयत ज़रूर याद आई आज सुबह जब मैं ये देख रहा था तो कुरान मजीद सूरह बकरा में कहता है वइदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना। मुनाफिकीन क्या करते हैं जब मोमिनीन से मिलते हैं, राउंड टेबल पर बैठते हैं, मस्जिद के सफ़ों में खड़े होते, वी आर विथ यू, वी आर ऑल्सो बिलीवर्स, वी आर स्टैंडिंग विथ यू। वइदा खलौ इला शयातीन, जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े शैतान और छोटे शैतान, जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते कालू इन्ना माकुम वी आर विथ यू। मोमिनीन से सब में खड़े होते वी आर विथ यू, और वहाँ जाने के बाद कहते वी आर विथ यू। तो फिर तो वहाँ का क्या कर रहे थे, वो पूछेंगे शैतान, शैतान थोड़ी राजी हो जाते हैं तुम्हारे कहने से, शैतान ने तो वहाँ क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे वो, इन्नमा नहनो मुस्तहज़िऊन, सिर्फ उनका हम मजाक उड़ा रहे थे। आज हकीकत में ये बड़े बड़े मुल्क न्यूक्लियर पावर कंट्रीज मुसलमान बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, वाकई मजाक उड़ा रहे हैं। घबराएंगे नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि वो बच्चे अगर तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, वो मज़लूम अगर तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनका एक दिन ज़रूर मजाक उड़ाएगा। जो आज साथ नहीं देते कल उनका कोई नहीं होगा, जब वो पुकारेंगे हमारा कौन है। ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी आज की दुनिया में हम देखते हैं, इसके लिए हमें दुआ करना चाहिए मुसलमानों के लिए। वो मुसलमान जो मजलूम हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो आजकल हर दिन उन पर हमले हो रहे हैं, उन मुसलमानों को याद करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। गज़ा के बच्चों को याद करना ज़िम्मेदारी। सीज़ फायर के बाद 3 साल हो गए, जेनोसाइड के 3 साल गुजर रहे हैं, हर दिन अटैक होते हैं, हर दिन अटैक। सीज़ फायर के बाद रिपोर्ट आई है, सीज़ फायर के बाद हर 90 मिनट्स में एक फिलिस्तीनी या मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है। सीज़ फायर के बाद, अग्रीमेंट्स के बाद साइन तमाम हो जाने के बाद हर 90 मिनट्स में एक बच्चा, एक बड़ा या शहीद हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है। फिर भी मुसलमान खामोश हो और बोले नहीं, आवाज़ ना उठाए, ऐसी मुसलमानी पर क्या कह सकते हैं। ये पॉलिटिकल

0: मैं दर हकीकत थोड़ा शरारती बच्चा था,
1: थोड़े से
2: अभी भी शरारती हो तुम।
0: उस रात 2 या 3 बजे रात तक मैं हिस करता रहा।
3: माशाल्लाह
4: माशाल्लाह।
0: मेरे वालिद स्कूल में चौकीदार हैं।
5: तेरा बहुत बहुत शुक्र मेरे अल्लाह कि तूने तौफीक दी कि मैं तेरी अमानत की बेहतर तरबियत कर सकूं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ये बात मेरे दिल पर लग गई और मुझे लगा कि मेरी हरकतों की वजह से मेरी माँ का दिल टूट गया है।
2: इस्तगासा माँ बाप का बहुत कारगर है।
6: कितने साल पहले हिस शुरू किया?
0: तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया।
5: मैंने एक आह भरी और कहा, परवरदिगार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी ऐसे तरबियत याफ्ता बच्चे समाज के हवाले करूं।
7: तरबियत आगोश मादर की है मिसले मदरसा, नस्ल पाकीज़ा फराहम ये करेगी कौम।
8: सभी बच्चे अच्छे हैं लेकिन इब्राहिम उन सबसे अलग है। इब्राहिम उन सबसे

0: अच्छे हैं लेकिन इब्राहिम उन सब से अलग है। आप इब्राहिम का ख्याल रखें और ये आपकी दुआओं का असर है। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह की कसम, मैं हर नमाज के बाद दुआ करती थी, मेरे अल्लाह मैं ये नहीं कहती कि मैं इस बच्चे की मालिक हूँ, ये तो तेरी अमानत है और मैं तो बस अमानत की हिफाजत करने वाली हूँ। मेरे अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मैं नहीं चाहती कि रोज़े महशर मेरा सर शर्म से झुक जाए कि मैं अच्छी अमानतदारी नहीं कर सकी।
1: अहसन,
2: अल्लाह अल्लाह,
0: हमेशा मेरे दिल में यही था। करबला गई वहाँ भी यही दुआ की कि इमाम हुसैन आप मेरी मदद फरमाए कि मैं अच्छी अमानतदार और बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूँ। ये चीज़ मेरे दिल में थी, ये मेरी रोज़ाना की दुआ थी। कुरान पढ़ती तब भी यही दुआ करती थी, मैं यही कहती थी कि अगर पड़ोसी का बर्तन भी घर आ जाए तो हम उसकी हिफाजत करते हैं कि पड़ोसी की मिल्कियत है।
2: सुभान अल्लाह।
0: इसी तरह अल्लाह ने हमें इन बच्चों को अमानत के तौर पर दिया है।
2: बहुत अच्छा।
0: और अगर हम अमानतदारी ना कर सकें तो मैं अपने को माफ़ नहीं कर सकती।
1: अहसन।
0: और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी मदद फरमाई।
3: तरबियत आगोश मादर की है मिसले मदरसा।
2: सुभान अल्लाह।
3: तरबियत आगोश मादर की है मिसले मदरसा, नस्ल पाकीज़ा फराहम ये करेगी कौम को।
1: अहसन।
4: खूब। इब्राहिम, चार पारे हिफ्ज किए फिर आखिर तक हिफ्ज करना जारी रखा, यानी दरमियान में कोई फासला नहीं हुआ?
5: फासला तो नहीं, हिफ्ज किया फिर हाजीआबाद आ गए यानी अपने शहर, फिर एक साल वाले कोर्स में शिरकत की जहाँ की खट्टी मीठी यादें अभी भी हैं।
6: पहली तो जानते हैं कि सैंडल चोरी हो गई।
5: वो दो महीने वाली क्लास की बात है।
6: अच्छा, दो महीने वाला कोर्स।
4: एक साल में कितना हिफ्ज?
5: एक साल से भी कम।
6: और आपकी क्या चीज़?
5: तकरीबन 8 महीने में मैंने पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया।
1: माशाल्लाह,
7: माशाल्लाह। अपने दोस्तों को भी मुतासिर किया
5: जी,
7: यानी दूसरों में भी हिफ्ज कुरान का शौक पैदा कर सके।
5: जब उन्होंने देखा कि मैं गया और हिफ्ज मुकम्मल कर लिया तो उन्हें हैरत हुई कि ये कैसे कर लिया। मेरे एक दोस्त ने चार पारे हिफ्ज कर लिए थे, फिर उसकी शादी हो गई और वो जारी नहीं रख सका।
4: बड़ा मैसेज है। इस सिलसिले में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ी सच्ची बात कही।
6: बहुत शुक्रिया जो आपने अब तक कहा इस सिलसिले में, बहुत उम्दा।
5: अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि उसकी अहलिया ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया और वो उसी चार पारे पर रुके रहे।
4: जनाब इब्राहिम, हाज अहमदी जैसा कि आपने इशारा किया, मुअल्लिम कुरान भी हैं अपने इलाके में, सही कहा ना?
5: जी,
6: माशाअल्लाह।
5: जी, मैंने फैसला किया कि अपने इलाके में कुरान मजीद की क्लासेस रखूं। अलबत्ता मैं शहर में रहता हूं, इसलिए हर रोज़ क्लास के लिए गांव आना जाना सख्त था, तो मैंने सोचा हफ्ता 10 दिन में एक बार गांव जाकर ऑफलाइन क्लास लूंगा और बाकिया दिनों में
7: ऑनलाइन। कितना फासला है?
5: 100 किलोमीटर।
7: 100 किलोमीटर?
5: जी, अपनी उसी बाइक से आते जाते हैं।
4: कौन जानना चाहता था कि वो बाइक कहाँ गई? उसी बाइक से 100 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को कुरान सिखाते हैं, फिर वापस आते हैं।
7: क्या जबरदस्त बाइक है!
2: जबरदस्त बाइक है,
8: माशाल्लाह।
4: कौन सी बाइक? मैंने कहा था ना बाइक चलाना बुरा नहीं है। आपने देखा बाइक चलाना गलत नहीं है।
2: कौन सी बाइक है?
4: देखा, बाइक चलाने वाले अच्छे होते हैं, खुदा की कसम। माँ और बेटे को आयत का तोहफा दीजिए
6: जनाब अहमद।

0: अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब इब्राहिम और उनकी वालदा गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकयान इनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक अहम टहोका है, ख़ासतौर से उन अफराद के लिए जो मेरी तरह किसी राह में कदम रखते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं।
2: अपने हाथों को बुलंद करें, शब कद्र है। मेरे अल्लाह तुझे इस बाज़मत शब का वास्ता, हमारे जवानों को सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा।
1: इलाही आमीन। माँ आप भी दुआ फरमाएं।
3: मेरे अल्लाह तुझे हजरत ज़ैनब के हक का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे बुरीदा का वास्ता, सभी फैमिलीज, सभी वालिदैन अपने बच्चों की कुरान, इस्लाम और दीन की राह पर तरबियत करें।
1: इलाही आमीन। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब इब्राहिम, आखिरी बात एक जुमले में।
4: जिम्मेदार हजरात से तवक्को यही है, हम कुरानी फील्ड में खिदमत अंजाम देने वालों पर तवज्जो दें।
1: जी
5: अहसन।
4: मख़सूसन कुरानी क्लासेस के इनेकाद में, चूँकि हमारा इलाका एक दूर दराज का इलाका है, हमारी तरह बहुत सारे लोग कुरानी क्लास लगाना चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं।
1: जी
4: एक ख़ास तवज्जो की दरख्वास्त है।
5: भाई रसालत।
1: जी
5: एक बात कहूँ?
1: जी पूछिए।
5: आज बाइक वगैरह की बात हुई, आपकी क्या राय है, आपकी राय क्या है, एक नई बाइक इनको तोहफे में दी जाए?
6: माशाल्लाह,
2: वाह वाह
6: एहसान।
7: खासकर उस हिम्मत और हौसले के लिए
5: जी
7: जो क्लासेस के लिए
5: इन्होंने बात कहते हैं, बाइक बुरी चीज है, हम बाइक देंगे।
2: स्पोर्ट्स शर्ट
7: के साथ कि हेलमेट।
1: सीरियसली बाइक तोहफे में देना है हमें?
5: जी बाइक तोहफे में देंगे।
1: बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
7: सब्र कीजिए, यहाँ किसी ने कहा गाड़ी।
2: गाड़ी देना चाहते हैं?
7: आप देंगे उसका पैसा, चंदा कीजिए, हम भी देंगे, कोई हर्ज नहीं, मिलकर दें एक गाड़ी तोहफे में।
1: महफिल मैनेजमेंट और मेजबान हजरात की बाहमी रजामंदी
7: और रिसालत बुजुर्गी और रिसालत बुजुर्गी
5: जनाब अबू जरी बुजुर्गी के एजाज में सलावत।
1: महफिल मैनेजमेंट और मेजबान हजरात की तरफ से एक

0: आई तो फेम देंगे जहांगीर साहब को।
1: बहुत शुक्रिया।
2: एक सैंडल भी साथ में है। सैंडल सैंडल
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, बाइक के साथ हेलमेट जरूरी है
3: जी।
0: हेलमेट के साथ
2: सैंडल के बारे में ज्यादा गुफ्तगू हुई है।
3: फिलहाल सैंडल है, बाइक चाहिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, सलामत रहें।
1: बहुत शुक्रिया।
0: और आपका भी मोहतरमा। इन हजरात की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सलावात भेजें।

Islamized is according to the even sources which is there in the Wahhabi book. Salawat on Iqbal. हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए. आजकल बहुत बातें होती रहती हैं. सोशल मीडिया और लोगों के दिमाग कंफ्यूज करता है. लेकिन याद रहे कि हमारा मजहब जो है बेबुनियाद नहीं है. हमारे यहाँ ये नहीं है कि उलमा की कमी है, लोग जो हैं स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स नहीं हैं दीन के मामलात में. खुदावंद आलम ने इस मजहब को लावारिस नहीं छोड़ा है. उसका एक वारिस है, पर्दे में है, लेकिन है. अपने अकीदे को मजबूत रखें, अपने अकीदे को नेक्स्ट जनरेशन तक सही मानों में पहुंचाएं. और ये जो कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं उनको आप छोड़िए. वो पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे. इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है. सिर्फ ये कि अपने मालूमात को बेहतर करें, अपने दीन को समझिए. ये जो बात शफात की होती है, खुदावंद आलम ने एक लिहाज से इंसानों के साथ डील की है. वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, वो जो आयत अली के लिए नाजिल हुई थी ख़ास तौर पे, इससे जनरल स्टेटमेंट, लेकिन शान नज़ूल अली के लिए है हिजरत में, कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह के साथ. इससे बार्गेन कि खुदावंदा मेरी जान कुर्बान हो तेरे मकसद के लिए, ताकि तेरी मर्जी जो है हमारे शामिल हाल हो. करबला में हुसैन इब्न अली ने क्या छोड़ा था कुर्बानी के लिए? कुछ नहीं छोड़ा था. जो कुछ दुनियावी एतबार से हो सकता था हुसैन ने सब कुर्बान कर दिया अल्लाह के खातिर. उनको तो आप शहीद मानते हैं, अली को आप शहीद मानते हैं, अब्बास को शहीद मानते हैं, रसूलुल्लाह को अगर शहीद भी न माने तो इन हजरात का मर्तबा रसूल से आगे नहीं है. रसूल इनके सरदार हैं. अगर वो शहादत हासिल करके अपनी जान के ये सौदा खुदा से उन्होंने किया है और खुदा ने ये हक दिया है, बस यहाँ बात पहुँची होती. एक वाकया बयान कर दें अल्लामा हिल्ली के बारे में है कि उनको हमेशा ये परेशानी थी कि ये किस तरह से होगा कि हुसैन जो है सबके लिए शफात कर सकते हैं, आखिर कोई लिमिटेशन होनी चाहिए. उनकी मुलाकात होती है हजरत आसर से. ही डिडंट रियलाइज हिम, डिडंट रिकॉग्नाइज हिम. और ये मसला दिमाग में था उनके, उन्होंने ऐसे ही एज ए पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन बात निकाली. बाद में एहसास हुआ कि ये इमाम थे. इमाम ने किस्सा बताया कि समझ लोगे कोई एक बादशाह है, जंगल में शिकार के लिए गया, रास्ता घूम गया, उसके गार्ड्स भी कहीं और थे, भूखा प्यासा वो और उसके एक दो लोग साथ थे. कहीं एक ज़ईफ़ा के घर कोई हट था, वहाँ पहुँचे और कहा कि हम लोग भूखे हैं. उस ज़ईफ़ा के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बकरी थी. उसने उसका दूध भी निकाला और बकरी को ज़बह भी कर दिया ताकि उनके लिए कुछ पीने के लिए भी हो जाए और गोश्त जो है वो खाने के लिए हो जाए. बाद में जब बात हुई, उस बादशाह ने कहा कि हमें क्या सलाह देना चाहिए तुम्हें? उसने तो दुनियावी एतबार से बात की थी, लेकिन बाद में खुद कहता है कि एक्चुअली जस्टिस का डिमांड ये है कि यू डिन ओन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट गोट, और तुमने अपनी पूरी दौलत जो है मेरे लिए दे दी,
इक्वल ट्रीटमेंट या जो कंपनसेशन की बात होती है हमें पूरी